पर असी नाम दा स्वाद छड़ के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही।

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तो रिधिया सिद्धियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कटे तपस्या कीती, रिधिया सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। धन गुरु नानक पातशाह, क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है, ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बह के बड़िया रिधियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तो आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह, अच्छा अहंकार दूर जो करना सी। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तो विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया, मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां, आ मैं हुणे दसदा हां। अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मरदाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मरदानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बादे बादे बादे बादे बादे बादे। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता, ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी, धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिधियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिधियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ, ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

जीवन आनंदमय हो गया। जिस जीवन कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नू आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमानत, ते दरगाह विच तेरे पासों लै लवां। सूई लै आया, घर वाली नू आके जिक्र कीता, भाई अज सतगुरां ने ए सूई दित्ती है, ते आख्या दरगाह।

इस चौपाई दे विच अपनी नहीं सारे संसार दी सुख मंगदे हैं। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। चौपाई दी शुरुआत हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। गुरु नानक नाम लेवा, दुनिया दे किसी कोने भी बैठे हो, जद भी पंजा बाणिया दा उपाठ करदे हन तां चौपाई साहब दा पाठ भी जरूर करदे हन। औखे वेले भी कोई पीड़ बने तां संगतां बड़े प्यार दे नाल चौपाई साहब दा पाठ करदियां हन, क्योंकि गुरसिख दे मन दी जिथे ए लालसा हुंदी है पाठ करन दी, उथे भरोसा भी है। इस वास्ते गुरसिख दोनों वक्त होर बाणियां दे नाल चौपाई साहब दा पाठ भी करदे हन ते नाले कहंदे हन, तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। तो जो चाहिदा है वो तेरे कोलो मिल सकदा है, इस करके तेरे सिवा मैं होर

अपनी पोती दे नाल रात दे हनेरे विच बरसात विच तुरिया जा रहे हैं। जंगल खत्म होया, कुछ पठान बैठे नजर आए, अग बल रही है। ए दादा ते पोती उन्हां पठाणा नूं कहण लगे, रब तुहाडा भला करे, साडे कपड़े गिले हन, कुछ समा अग सेक लैण दिओ। उन्हां पठाणा ने इस बाबे नूं देखिया जिहड़ा अखां तों अन्ना, मन विच बुरा ख्याल आया, ए बाबा की साड़ा बिगाड़ सकदा है। ए सोच के उस लड़की नू अपनी कैद विच पाया, पर वो लड़की किसे तरह कैद विचों भज निकली अपने बाबे दे नाल। फिर पठाना ने घेरा पाया, इन्हां नू मारन लगे। इस बच्ची ने हाथ जोड़ के कलगियां वाले पातशाह दे चरणां विच अरदास कीती, हमरी करो हाथ दी रक्षा। अरदास कीती, तोड़ उड़दी नजर आई, उसे तोड़ विचों शां शां दी आवाज करदा एक तीर आया। उस पठान दे लगा जिहड़ा बाबे नूं मारन लगा सी। देखदिआं देखदिआं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत आ पहुंचे हैं। उन्हां दोनां दी रक्षा कीती। उस बाबे ने उस बच्ची ने सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिआ। इस बच्ची दा रोना देख के साहिब जी कहण लगे, बेटा रो ना, जद भी कोई प्यार ना गुरु दा ओट आसरा लैंदा है ते गुरु हर वेले उन्हां दी रक्षा करदा है, तां ते आओ पाई आपां भी होर आसरे छड़ के।

पाणान पान देवान दे उपमा महा कलगी सरपाशा केंद्र ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहर दे बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

ऐसा महल उसर जांदे, फुल भी लगे नहीं, फुहारे भी नहीं, फुल तोड़ लो ओदी जगह दूसरा फुल आ जाएगा, क्योंकि इत्थे मौत नहीं। इस शहर बारे भगत रविदास जी आपां नूं कुछ ज्ञान करवांदे ने कि इह शहर कैसा है।

कहंदे ने मेनू ते ए वतन मिल गया, एदे विच जगह मिल गई है, इस शहर दे विच हमेशा ही खैर है, कोई दुख तकलीफ

ज्यों त्यों प्रभाव को समझायो इम कह के लोक पठायो मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ, किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले, आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो आज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया, मुरपित पूर

पर्वत जिथे अज हजारा संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदे अपनी गल दे नाल लगा लैंदे अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदे आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए कीर्तन करिए सुनिए हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे साड़ा आया सफला हो जावे।

थियो रंग लाए गुर कृपाल होए दुग जाए। Embrace love for Guru's Bani. When the Guru shows mercy, pain is destroyed.

श्री प्रभात जी महाराज जी ने बड़ी वड्डी कृपा करके दस्या भी अमावस उड़ीक सारे चो पहला देवत्या ते दैंता ने कीती। श्रोमणी देवते सारे चो ब्रह्मा विष्णु शिव जी मने जाते हैं। पार्वती ने उड़ीक की भी मेरे पुत्र नू तिलक लगना किते मस्या सोमावती आ जावे। उस दियां उड़ीकां जिहड़ियां सी परमेश्वर ने पूरियां कर दित्तियां। मस्या आई भाग लग्या। गणेश दी शिव जी दे पुत्र दी पूजा देवत्यां तो सारे चो पहला शुरू हो गई। कोई कार्य होवे गणेश दी पूजा उस दे विच मन्नी गई। भागां वलों नौवें पातशाह जी दा समा आया। तरन तारन दे विच इशनान करना सी कोड़ियां दी कोड़ दूर करन दे वास्ते। ज्यों ज्यों अड़ीक कीती मस्या आवे ते उस दिन दे उते इशनान होवे। जिस वेले मस्या आई इशनान कीता कोहड़ियां दे कोहड़ दूर हो गए। ओ भी दिन मस्या दे सन। पर जिस दिन बाबा जी दरगाह गए उस दिन भी मस्या सी। बाकी दे दिन तां उड़ीक दे शाम भी ओ दिन ओन भागां वाले। पर वो मस्या अजिही आई उस दे विच कलयुग भी काला। भागां वलिओ रात भी काली। मन जिहड़े सन उस वेले जिन्ने बुझ गए वो भी काले हो गए। उस वेले दा हाल जिहड़ा सी की सी भी मस्या ना आउंदी तां चंगी सी। अजिही मस्या जिस मस्या वाले दिन धन भव आनंद सिंह जी महाराज जी ने अपना मुख जिहड़ा सी उह छुपा लिया। संगतां बैठियां उड़ीक दियां। बाबा जी देहरादून तो आए हैं कोई ना कोई वचन सुनांगे दर्शन करांगे। पर वो जिहड़ी मस्या सी वो मस्या वाली रात सचमुची मस्या होगी कालिक होगी। जिस वेले वेख्या ते उस वेले भागां वलों सारे सोचदे सन भई कलयुग दे विच देहां जिहड़ियां इन्हां नूं मस्या दी लोड़ नहीं। महापुरशां दा जाना महापुरशां दा आउणा इह तां हमेशा बख्शी दे दिन हुंदे आ। अमावस बख्शिश वाली सी। पर इस बख्श दे दिन इस अमावस दे दिन हर एक दियां अखां दे विचों नेत्रां दे विचों पानी द्रिप द्रिप चौंदा सी। किसी दा जी नहीं सी करदा भी मैं किसी नाल गल करां। मैं किसी नूं इह आखां भी मस्या भाग वाली है। हर एक दा मन उस वेले वैराग दी वी सी। जिस वेले पुछया रतन सिंह नूं अज दिन की है कहण लग्या मंद भागा दिन। दुनिया पाणी मस्या ओ है जिस मस्या वाली रात दे विच कोड़ियां दे कोड़ दूर होए। भागां वलिओ उस दिन साडे कोलों धन भव आनंद सिंह जी महाराज जी दे दीदार मुक गए। महीने का अंत हुंदा है। तारियां दे हिसाब दे नाल मन्निया जांदा भी मस्या दे महीने का अखीर आ गया। पर जिस वेले बाबा जी गए उस वेले समझिया भी साडे सिर दे उते हाथ रखण वाला अज नजर नहीं आउंदा। अज उन्हां दे दीदार जिहड़े उन्हां दा अखीर आ गया। किसे दा मन नहीं सी करदा भी मैं मस्या नूं याद करां। ओही मस्या आई उहदे विच 14 रतन कढे गए।

कोई छे छे कर्म सत्सत कर्म साधु ही साधु कुल होते है, पीछे पीछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भगवान है वह उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले वो समय याद आता उस वेले ए लगता है भी किन्नी धरती हरियाली है, से संत पे हरियाले जिन्ना मेरा सतगुरु देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागां वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर चलिया पर रोन बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवा, जी करदा सी उची उची भुवां मारा। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन

be specific and answer if you have a story to tell me. आओ तेरा कि क्या भी सामना वाली है कि क्या हो रहा है और

वाहेगुरु जी ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुरु प्रसाद आसा मल पहला वार श्लोक नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिए।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरा मर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कट कट महला पहला
2: बड़ी उड़ेगा बड़ा।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला विस्मारनाथ विस्मार वेद विस्मार जी विस्मार पे विस्मार रूप विस्मार रंग विस्मार नागे फिरे जन विस्मार पौन विस्मार पानी विस्मार अग्नि खेरे बिडान विस्मार तर्जी विस्मार खानी विस्मार साध के प्राण
1: विस्मार स्नोग विस्मार विजोग विस्मार पुख विस्मार पो विस्मार शिफ्ट विस्मार सला विस्मार औजल विस्मार दरा विस्मार नेड़े विस्मार दूर विस्मार देख आदरा दूर देख बिडान रिया विस्मार नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुदर से कुदर सुनिए कुदर

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसी भी संगीत ग्रंथ राग किसी राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवीं नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इस दा वादी सुर ऋषभ अते समाधि पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्निया है। सरवण करो, रे मन कौन गत होए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी।